ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। आलमी इदारा सेहत WHO ने जापान के साथ अपने ताउन को गहरा करने के लिए टोक्यो में एक दफ्तर कायम किया है। इस नए दफ्तर का मकसद तरक्की पजीर ममालिक में सेहत की देखभाल के निजामों को मजबूत बनाना है। मंगल को टोक्यो में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। WHO और जापान की वजारत सेहत के सीनियर हुकाम ने दीगर अफराद के हमरा इस तकरीब में शिरकत की। एक वीडियो खिताब में WHO के डायरेक्टर जनरल टेडरोस एडहानोम गेब्रियासिस ने कहा, कम और दरमियानी आमदनी वाले बहुत से ममालिक को अपने सेहत निजामों के लिए गैर मुस्तहकम फाइनेंसिंग का सामना रहता है। उन्होंने जोर दिया कि टोक्यो दफ्तर का इफ्तिताह इमदाद पर इन्हिसार के बजाय सेहत के मैदान में खुद मुख्तारी की जानिब मुंतकली की कोशिशों का मजहर है। जापानी वजीर सेहत ओइनो केन इचिरो ने कहा, ममालिक के लिए जरूरी है कि वह सेहत के ज्यादा मुस्तहकम निजाम की तामीर के लिए अपने तजर्बे और इल्म का इश्तराक करें। ओइनो ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि नया दफ्तर जापान और WHO के दरमियान राब्ते के मरकज के तौर पर मजबूती से कदम जमा लेगा। उन्होंने इंदिया दिया कि जापान दीगर ममालिक में सेहत देखभाल के निजामों की तामीर में किरदार अदा करना चाहता है। टोक्यो दफ्तर का कहना है कि वह तरक्की पजीर ममालिक के साथ अपनी मालूमात और इल्म महारत का इश्तराक और जापान के साथ हम आहंगी को गहरा करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर सेहत के हुक्काम के साथ तरबियती नशिस्तें और इजलास मुनाकिद करना चाहता है। जापान की फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी का कहना है कि 6 से 12 जुलाई के दरमियान 4,580 अफराद को हीट स्ट्रोक यानी लू लगने के सबब अस्पताल ले जाया गया। यह तादाद गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत 3 गुना ज्यादा है। एजेंसी ने कई रोज से दिन के वक्त दर्जा हरारत ज्यादा रहने को मुतासरीन की तादाद में इजाफे की वजह करार दिया है, क्योंकि बहुत से इलाकों में बरसात का मौसम खत्म हो गया है। एजेंसी लोगों से अपील कर रही है कि वह हीट स्ट्रोक के खिलाफ इकदाम के लिए ज्यादा कोशिशें करें। मुतासर अफराद में से 7 हलाक हो गए। 1,866 अफराद को शदीद या मोतदिल अलामात के साथ अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 2,652 मुतासरीन की अलामात हल्की थी और उन्हें अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत नहीं थी। मुतासर में से निसफ से ज्यादा यानी 2,827 अफराद की उम्र 65 साल या उससे ज्यादा थी। 1,317 अफराद की उम्रें 18 से 64 साल थीं। 403 अफराद की उम्र 7 से 17 साल के